अभय पद राज अभिखन अधिक करो ए शब्द भगत नामदेव जी का उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तों भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेगा इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे होए ने। राजे भी सन पर राजकुमारन दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने, अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नो अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तू ओरहत हो गए, राज पवीखन अधिक करो। जिस तरह पवीखन नो श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता है।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमृत पवजल तरिया, भगत अमृत भी संसार सागर तू पार होके

भगत अमरीक बारे। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच, अमरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया। ए राजा अमरीक जिन्हां दे पिता दा नाम ना भाग सी, राजा अमरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। एदी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रख्या होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम सी तू अमरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे हैं? राजा अमरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओ उठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया है, तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया। अखा गुस्से ना लाल हो गई है, कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू खत्म कर।

साहिबजादे सूबे दे सिपाहियां नाल ठंडे बुर्ज विच माता जी पास पर पाए। माता गुजरी जी पोतियां कोलों इस तरह हाल पुछदे हैं।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरों अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

काल खाए छत होंदे, काल खाए छत होंदे, नानक रा पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, मां होंदे कोई नी माणा। हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, तां होंदे कोई नी ताणा। छठ सियाणप हो।

भगत रविदास जी अपने शब्द विच फरमान करते हैं कि निंदा करन वाला मनुख कितने भी चंगे कर्म कर लवे, उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। जिमें कि 68

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है

साहिबजादियां दे इस महान बलिदान नूं वेख के सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी महिमा

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना, मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होण करके कई बार निराशा का मूह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउण दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास हो सकती है। और सच्ची गल जानना अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन, आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हाथ बनने, लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी होंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह होंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो, मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकागर करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है, ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा है, घबराया हुंदा है, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कारज सवारदा है, वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कारज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कारज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कार्ज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदो सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जां च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ

जिसका सब सुविसाह जिदा सारिया नू विश्वास है जिदे ते विश्वास कीता जा सकता है विसाह कीता जा सकता है जिदी समर्था थोड़ी होवे शक्ति थोड़ी होवे ओदे ते काम छड़ के कई बार विश्वसा बनया रहेगा डर बनया रहेगा तौखला बनया रहेगा। वाहेगुरु ते भरोसा करन वाले नू विश्वास बजदा है विश्वसा नहीं रहिंदा खतरा ते तौखला नहीं रहिंदा। दृढ़ विश्वास वाले बंदे जिसले उत्ते भरोसा करते ने फिर इस तरह करते ने कि सब सियाणपां छड के गुर की चरणी पाह फिर अपनी सियाणप की गल नहीं करते। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाम सुख तैनू देवेगा सहज तेरा बनिया रहेगा तू केवल ओदे नाम विच जुट जा ओदी भगती च जुट जा। आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ तू ओदे गुण गाउणा शुरू कर तू अठे पैर ओदे ध्यान च रहना शुरू कर ओ तैनू अपने ध्यान च रखेगा। तिसकी शरणी परमना जिस जेवड अवर ना कोए किसे छोटे मोटे दी शरण पैण दी की लोड़ है तू ओदी शरण पाओ जिदे जिड्डा होर कोई नहीं है जिदे वर्गी समर्था किसे होर कोल नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घणा जिनू याद करन नाल बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति हो वाधू सुख की प्राप्ति हो। दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी तू ओदी सेवा च लग प्रभ साहिब सच्चा सोए जो सच्चा मालिक है। साध संगत होए निर्मला सतसंगियां नाल रल के पवित्र होके निर्मल होके मलीन बुद्धि नू छड के दुरमत नू छड के गुरमत दा धारनी बन के कटिए जम की फास सुख दाता भय भजनो तिस आगे कर अरदास फिर तेरी अरदास करन दी ढिल है ते ओदी रहमत करन च कोई ढिल नहीं। किसने ओ रहमत करेगा मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास जीवन दे सारे कारज सौर

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार दिंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार, यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा है, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगदा है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, लक्षण बदल गए, शुभ मार्ग पै गए, सतगुरु ने पा लिया मार्ग पाए उद्यान में भटकदिया फिरदिया नू, उजाड़ा विच भटकदिया नू, सतगुरु ने गुरमत दे राह ते पा के जीवन का ऐसा प्यारा भेत समझाया। हालात सुहावने होंदे चले गए, जदों ख्यालात सुहावने हो जाए, ख्यालात नेक हो जाए तो हालात भी चंगे हो जाए। हालात बंदा आप ही खराब कर लेता, दोष हालात नू देंदा, लेकिन हालात नू खराब करना मनुख दे अपने कमां दे सामने हो। गुरु के लड़ लग जाइए लक्षण बदल जाते, हालात भी बदल जाते, हालात भी चंगे हो जाते। वो जेडे हालात महाराज ने इत्थे जिक्र किया है, प्रभु हिरदे च वस गया, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नठ उठे, पंच चोर आगे भागे, गुणा दी पूंजी पूंजी साबत कणो लाभ, ग्रह शोभा सेत हिरदे घर विच शोभा शोभा हो गई, वड्याईयां ही वड्याईयां आ गईयां। और सतगुरु ने तो बड़ी कृपा की, दूण चौनी दे वड्याई शोभा नीता नी, मेरो गुर रखवारो मीत, बुराइयां तो मैनू रख लैण वाला मेरा सतगुरु, मेरा मित्र, मेरा अपना, मेरा सखा, उसने बड़ी कृपा की है मैनू बुराइयां तो बचा के धर्म दे मार्ग ते पा के वड्याईयां दे राह पाया। दून चौनी दे वड्याई शोभा नीता नीत, नित नित वधदी शोभा, जिसनू अपने तां प्रवान करन सो करन, ओपरियां ने भी सिर मत्थे प्रवान किया नहीं, दुश्मनां ने भी सिर मत्थे प्रवान किया। आपां पढ़दे हां इतिहास, साडे अपने कोल तां लिखिया ही ना गया, लिखण दा वक्त ही नहीं सी, अपनी रिपोर्ट आप तैयार करन दा समां ही नहीं सी, खालसे सिख कोल अपनी गल लिखण दा समां ही ना मिलिया। गुरी कु गुरु की गल नू समझदियां ते कमाउंदियां, समें दियां हकूमतां दे नाल टक्करां लैंदियां, कुर्बानियां देंदियां, सेवा कमाउंदियां, त्याग करदियां, इस नू इतनी फुरसत नहीं लिखी कि मैं की कर रहा कितें लिख भी देवां, लिखणा दूजियां नू पिया ते ओह निष्पक्ष नहीं सन, लिखण वाले निरपक्ष ना रह सके। जे किसी साध ने उदासी ने लिखिया तो उन्होंने भी रखता सी ये मत, क्योंकि गुरमत जेड़ी है पाखंड ते बहुत वड्डी चोट है, ते जिने जिस वेले उन्होंने लिखिया अपनी मनमत ते अपनी दम वाली बिरती ते पैंदी सट नूं उह कदों ठीक तरह लिखणगे, उन्होंने ईमानदारी नहीं वरती, ते जिन्हां नाल सीधियां टक्करां लगियां ही सन उन्होंने की लिखना सी, उन्हें तो लिखण लगे इतिहास लिखिया है, तो सिख ना लिख के सग लिखते। लेकिन एक बड़ी कमाल की गल, उधरों सग भी कहते कुत्ता भी कहते, गल कर लगे बंदियां वांगू नहीं करते, दुश्मन बन के ही गल करते, लेकिन उन्होंने यह पता नहीं लगता कि जिदा गल करते पाए गल करने के शोभा कर रहे, इनका इतिहास लिख रहे हैं कि इन्हों की वड्याई कर रहे। कट्टण मुसलमान लिखारियां ने भी जिस वेले सिखां दे बारे लिखे है ते लिखदियां लिखदियां भुल गए ने कि असी इन्हां दे औगण दस रहे हां कि गुण दस रहे, सच्चाई लिखदियां लिखदियां, बल्कि जिन्हां दियां अखां दे उत्ते फिरकू पुणे दा कट्टण पुणे दा शरीयत दा पर्दा पिया होया सी, जिहड़े सारी दुनिया भर नूं काफर कह के बुलाउण वाले लोग ते जिन्हां नूं बहुत रड़कदे सन, प्यार दी आवाज उठाउण वाले नादर आया सी ना, आके बैठा दिल्ली ते कहण लगा मैनूं राह च परेशान कीता कुछ लोगों ने कि तुहाडी हकूमत कैसी है। दिल्ली दरबार वालों माफिया मंगियां गई जी, महाराज साढ़े वस की गल कोई नहीं। अहमद शाह अब्दाली लाहौर आया सी, उन्हें भी यही सवाल किया सी खान बहादुर जकरिया खान,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ?

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है।

अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने। कहानी कहते हैं बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनु कोई सुनावे कोई कहे। अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर जोत राम प्रगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुर

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

गए, भगत बन गए, संत बन गए। जिन्हें इस कहानी नूं समझिया नहीं, बेशक उन्हां भगती कीती, सिमरन कीता, पर वो किसे मंजिल ते पहुंच ना सके। इसे वास्ते देखदे हां कि कई बारी बहुता सिमरन करन वाला, बहुता मंदिर मसीत गुरुद्वारे जान वाला भी दुबदा दा भरिया हुंदा, क्योंकि गया ते है मंदिर मसीत गुरुद्वारे, पर मन विचों दुबदा ना कट सके है, क्योंकि पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हिरदे विच नाम नहीं वसया, प्रकाश नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा प्रकाश है परमेश्वर का, वह ते दुबदा दूर कर देंदा है। जिहाली मन विच दुबदा है ते समझो कि बेशक नाम जपदा है, पर अंदर हालिए दे नाम वसया नहीं। और ये परमात्मा दे मेल दी अवस्था जद हो जाए तो फिर इंसान दी हालत की होंदी है। भगत नामदेव जी सानू अपने शब्द द्वारा उपदेश करते हैं।

ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन किसे

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जोत।

ता तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वह रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन काटे। सुख बहुती माया विच भी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानूं तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानूं ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं,

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा, अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे नु दुख देना, यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है, जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु का उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इस वास्ते है कि सच्चा उपदेश साढ़े हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु की प्राप्ति नहीं। दोनों जने धनी सेठ दे घर पहुंचे। उस धनी पुरश ने दोनों भगतां की सेवा की, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्नी माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा का चा है, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते ने असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनू भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना है तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेक शब्दों विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ, ਔਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। पहला ते हाथी ने परवाह ना की, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए दा जोर चलिया, ते हाथी नू खिच के ओ पानी दे

आया है उदो तो मेरे मन नु शांत हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू इनिया बख्शिशा कीतियां हैं इनिया रहमतां कीतियां हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

कोई अवर ना सूझे हर नामो अंत छड़ाता, क्योंकि जीवन तो सुख देंदा ही देंदा है, जीवन को बाद कौन बाह फड़ेगा, कौन छड़ावेगा सवाए प्रभु दे नाम दे। ते जे सतगुरु ने इस नाम दे लड़ लाया है, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, धन धन गुरु का पिता माता, वो आप दा धन उहदे माता पिता भी धन। हुण सतगुर अपने को सदा नमस्कारी, मैं उस सतगुरु नूं सदा नमस्कार करा, जित मिले हर नाम मैं जाता, जिसने जाग अंदर कुदरत वरताई। आम तौर ते महापुरुषां ने वडियाईयां प्राप्त करके बख्शां लैके अपनी पूजा करवाई, अपना सत्कार कराए, लेकिन धन गुरु नानक ने निरंकार नाल जोड़िया। आ जिहड़ी पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है, धरी निशानी कौंस दी, मक्के अंदर पूज कराई, मक्के अंदर गुरु नानक दी इक खड़ाम पई, हाजी जांदे ने हज करदे ने इस खड़ाम नूं ही मत्था टेकदे, लेकिन गुरु नानक ने नहीं कहा मेरी खड़ाम नूं मत्था टेकना। गुरु नानक तां मक्के अंदर भी ये कहंदे ने प्रभु दी पूजा करो, उन्हां तां प्रभु दी पूजा कराई। ये गल वखरी है कि प्रभु नाल जोड़न वाले दी खड़ाम दा भी सत्कार अज तक हुंदा चले आ रहा। जिथे जाए जगत विच एक मक्के दी गल की, बाबे बाज ना खाली जाई, संसार ते जिथे भी गुरु नानक दे चरण पए ने लोकां दे जीवन बदलदे चले गए। जेड़ा जेड़ा भी गुरु नानक दे सामने आया उहदे जीवन च कितनी तब्दीली आउंदी चली गई, नाम दे सदका गुरमत दे सदका। घर घर बाबा पूजी है, हिंदू मुसलमान गुआई, घर घर च गुरु नानक दी जय जयकार हो रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान चाहे कोई होर मत वाला। गुरु नानक नूं गाउंदे ने, इस करके गाउंदे ने क्योंकि गुरु नानक निरंकार नूं गाउंदा ते गुरु नानक नाल लाउंदा है, गुरु नानक नाल जोड़दा है। छपे ना है छपाया, चढ़िया सूरज जग रुशनाई, गुरमत दा ऐसा सूरज चढ़ पिया है हुणे छुप नहीं सकदा, बुकिया सिंह उजाड़ विच। गुरु नानक दी गुरमत ऐसी है, संसार विच गरजी है, सब मृगावल भन्नी जाई, विकारां दी मृगावली नूं भजणा पै गई, चढ़िया चंद ना लुकई, कड कुनाली जोत छपाई, बल्कि इथों तक भाई साहब कहंदे ने उगवण तै आथ वणो, नौ खंड पृथ्वी सभा चुकाई, चढ़दे तो लैके लहिंदे तक ए सारी धरती गुरु नानक दे नाम अगे चुकदी, क्योंकि गुरु नानक ने पिछे भी काल कमाई कीती है ते बख्शिश लैके भी काल कमाई जारी रखी है, अज ओहदा सिख किवें ना काल कमाई करे। गुरु नानक नूं मनण वाला, गुरु नानक नाम लेवा, किवें ना अमृत वेले जागेगा, किवें ना नाम दान इशनान च रता होके भगती दे मार्ग ते पैर पैर अगे वधेगा, किवें ना गुरु नानक दा सिख इस कठिन जीवन नूं सिर मत्थे प्रवान करेगा, क्योंकि गुरु नानक ने कीता काल कमाई कीती, पूरा जीवन काल कमाई नाल भरिया, पूरे जीवन विच तप ही तप है, मगर ओह तप नहीं जिसनूं लैके जिस तप नूं करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके लोकां ने मत्थे टिकाउणे शुरू करते ते लोकां नूं शराब देने शुरू कर दित्ते सन, ऐसे नहीं। गुरु नानक दे तप विचों ठंडक निकलदी, बल्कि भाई नंद लाल साहब जी दे कहण अनुसार कैसा है गुरु नानक, कहंदे ने नाम है ओह शाह नानक हक केश, नाम ता उस शाह दा नानक है, पर उस नानक वर्गा के नियायत चुनू दिगर दरवेश, ओदे वर्गा कोई होर दरवेश होर फकीर आया जापदा नहीं, होर नहीं कोई ऐसा होया, फकर है ओ फकर रा सरफराजी, फकीर ओ कैसा है जिहड़ा फकीरी नूं सन्मान देने वाला है, जिदे करके फकीरी दा मान वधदा है, पेशे ओ कार जुमला जांबाजी, जिदे सामने सारा कुछ वार देन नूं जी करदा, ताल बे खाके ओ चे खासो चे आम, जिदे चरना दी खाक नूं वड्डे तो लैके छोटे तक, आम तो लैके

0: पंगु प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असि भी इन्हों के दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्हों के दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है। तुसी दो घड़ियां आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान नू लैनी हूं नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
2: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास,
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरोवर

0: पत्नी, तू तान्य पुत्र, ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।

समझदार सोजी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया ने जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड्डे स्वाद भर छड्डे अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगला भी दे लेता अणपौंदा शोर हो ते नहीं भी बर्दाश्त होता इस तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबू भी लैंदी ते दुखी भी होंदी है खुशबू नाल सुखी भी होंदी जीभ ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आए इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे इह नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली कीड़ी कीड़ी वस्तु ते फिर उस रस पिछे स्वाद देण वाली शै पिछे कई वारी बंदा कमला भी हो जांदा इथों तक कमला होया बंदा कई वारी इन्हां रसां पिछे सुनन दे रस पिछे सुंघण दे रस पिछे वेखण दे रस पिछे छोण दे रस पिछे चखण दे रस पिछे इन्हां स्वादां च कई वारी बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों वी थले जावे पावन बाणी च बचना है मृग मीन भृंग पतंग कुंचर मृग नूं हिरण नूं कन्नां दा रस है मच्छी नूं जीभा दा रस है पंवरे नूं सुंघण दा रस पिया है फुल दे विच बैठा बैठा विचे ही शहीद हो जांदा है फुल मिटिया जांदा विचे खत्म हो जांदा पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है इहनूं वेखण दा रस है ज्योति उत्ते सड़ मरदा है पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया ते पंच दोख असाध जामे बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए तां भी तां की केत कास इहदा किवें बचा होए असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया एक आत्म रस भी है साहिब कलगीधर पातशाह ने वचन कीता है साहिब कहिंदे ने

नाम साफी मानस की जात सब एक पहचान एक पहचान वो हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की

हाफिज़ इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो एक पहचान वो हिंदू तुर्क को हाफिज़ इमाम साफी मानस की